तित सर्वरड़ै तित सर्वरड़ै पहिले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया। पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबी अले मनु एक न चेत समूढ़ मना।

जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जुथियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ता हे हमारा जवन

सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मुंह बद कियो, काट काट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पिशानत, चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्य है ताके का निक नहीं है रक्षा हुए ता है सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तो

जहे हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, बड़ पागी हर जपना जन नानक को गुरु मत दीनी।

तान में हेस के ते वर में काट कड़िया रूप रंग के वेश के तिय कर्म भूमि मेर के ते केते धूप देश के तिंद चंद सूर के ते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नृंद केतिया सुरती सेवक केते नानकांत नांत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तथा घाट घड़िए बहुता नूपता कियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछाए पछताए तथा घड़िया सुरतमत मन बुद्ध है तथा घड़िया सुरा सिदा की शुद्ध है कर्म खंड।

ठाकी जाहि जिनके राम बसे मन माहि तथे भगत वसे के लो करह नन सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेख नर निहाल तथाय खंड मंडल वर भांजे को कथाय तय अंत नंद तथा लो अलो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाव हारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप तावो भांडा पाओ अमृत तेत ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनकाओ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत

सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणं सर्वंत्राणं सर्वंकर्मं सर्वंधर्मं सर्वंयोक्ता सर्वं

चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुक्ते स्वयं पवसुपं सर्वदा सर्वयुक्ते

तुम्हें शाड कोई वर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्य हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ है मुझे उबरी है मन काल का त्रास निवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु।

नमस्कार तस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट की अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान न कट कट की पट पट की जान जब युद्ध कर करा करता रा प्रजा तर तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन थ्रिष्ट सब तहरा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्नम

अंगीकार्यो कृतिरा कार्य सब सुवर्ण सब नंगल सम्राट स्वामी सो के मनोविसारी कह नानक मन मेरे सदा रहोर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सुलाह तेरी नाम मन वसावे नाम दिन कह मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियां वड़ियाइया कह नानक सुनो संत हो सब धरो प्यार हो साचा नाम मेरा आधार हो वाजे पंच सब तत् घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच तू तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो सिनाम हर कह लागे कह नानक तै सुखुआ तित घर अनहद वाजे

सुन त्यार हो अकत की करह कहानी करहै कहानी अकत केरी कित द्वारे पाइये तन मन धन सब सौ पुरख हुकम मनिए पाइए हुकम मने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकत कहानी

हे रसना तू अनरसराज रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होत के तज चर हरस पल्लै न पाए हरस पाए पल्लै पिए हरस बौन न तृष्णा लागै आए हो हरस करमी पाई है।

कि कर्म कमाया तुत शरीरा जातु जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चितलाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिने अवर न देखो कोई हर बिने अवर

कर कृपा प्रभु मिले। गुर पूरे चरनी लाया हर संग सुहाई पाया जह जाइए तहां सुहेले

0: दी।
1: ये मात पिता सुतमीत न पाए,
0: मालूम हुआ नाम तेरे संग सहाई।
1: महाव्यान दूत जम दले,
0: तह केवल नाम संग तेरे चले।
1: मुश्किल हो गए अत पारे,
0: हर को नाम खिन माहे उदारी। हर को नाम कोट पाप पर हरे,
1: नाम जपो मन मेरे,
0: नानक पावो सुख कनेरे।
1: राजा
0: हर का नाम जपत होए सुखिया,
1: क्रोधी बंधन परे,
0: हर का नाम जपत निस्तरे।
1: नानक माया रंग दिख न बिजावे,
0: हर का नाम जपते अगावे।
1: ये मार्गे जाता अकेला,
0: तै हर नाम संग होत सुहेला। नानक गुरमुख परम गत पाई है, नाम जपता पार प्राही। हर का नाम तत्काल उदार है, नाम जपत पावे विश्राम। हर का नाम कोट पाप खोवे, नानक पाई है साध कै संग। हर का नाम महा संतोषा, हर का नाम संग उजियारा। हर का नाम तै नाल पछानो, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। तह नानक हर हर अमृत वर्ख है, संत जना के मन विश्राम। हर के नाम उदरे जन कोट, हर हर औखद साध कमात। पार ब्रह्म जन कीनो दान, नानक जन के व्यर्थ विवेक।

सगल कटाके अंतर जामी आपन संग आपराते नानक अवर न जान सकोय हर को नाम जप निर्मल कर्म साध संग दुर्मत मल हिरिया हर का नाम जपो जी सदा हर को जसन रसन बखानी।

0: तिस ठाकुर को रख मन माहे।
1: जे प्रसाद सुगंधित तन लावे
0: तिसको सिमरत परम गत पावे।
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर
0: तिस हत्याए सदा मन अंदर।
1: जे प्रसाद ग्रह संग सुख वचना
0: आठ पहर सिमर होते सरसना।
1: जे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ध्याये त्यावन जोग।
1: जे प्रसाद पाठ पतंबर हंडावे
0: तिस हत्या कत अमर लुभावे।
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जे
0: मन आठ पहर ताका जस गावी जय।
1: जे प्रसाद सबको माने
0: मुखता को जस रसन बखाने।
1: जे प्रसाद तिरु रहता धर्म
0: मन सदा ध्याये केवल पार ब्रह्म। नानक पासे ती कर जावे।
1: जे प्रसाद आरोग कंचन देई
0: लिव लाभो तिस नाम स्नेही।
1: जे प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ताके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके।
1: जे प्रसाद तुमको न पहुंचे
0: मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे।
1: जे प्रसाद पाई दरलभ दे
0: नानक ताकी भगत करे।
1: प्रसाद आपू कर पै दीजे
0: मन ते सिमरत क्यो आलस कीजे।
1: प्रसाद आस्था असुभारी
0: मन ते प्रभ को कबो ना बसारी।
1: ये प्रसाद बाग मिलक तना
0: राख ब्रोए प्रभ अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत सहते आई।
1: जिसे त्याए जो एक अलखे
0: इहा उहा नानक तेरी रखे।
1: ये प्रसाद करे पुन बो दान
0: मन आठ पहर कर तिस का ध्यान।
1: ये प्रसाद तू चार व्यवहारी
0: तिस प्रभ को सास सास चितारी।
1: ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
1: ये प्रसाद तेरी नीकी जात
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: ये प्रसाद तेरी पत रहे
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
1: ये प्रसाद सुने करनाद
0: जे प्रसाद देखे बिस्माद।
1: ये प्रसाद बोले अमृत रचना
0: जे प्रसाद सुख सह जे बसना।
1: ये प्रसाद हस्तर चले
0: जे प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: ये प्रसाद परम गत पावे
0: जे प्रसाद सुख सह समावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लाग्यो
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: ये प्रसाद तु प्रगट संसार
0: तिस प्रभ को मूल न मनो बसार।
1: ये प्रसाद तेरा प्रताप
0: रे मन मूल तू ताको जाप।
1: ये प्रसाद तेरे कारज पूरे
0: तिसे जान मन सदा हजूरे।
1: ये प्रसाद तू पावे साच
0: रे मन मेरे तू तास राज।
1: ये प्रसाद सब की गत होए
0: नानक जाप जपै जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ
0: आप गावे सो हर गुण गाओ।
1: प्रभु की पाते हुए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विगास।
1: प्रभु तो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
1: सर्वन दान प्रभु तेरी मैया
0: आपो कछु न केनहु लया। जित जित लाभो दित लगे हर नाम।

ज्ञानी होए अष्टपरी, जैसे जल में कमल लेप, जैसे सूर सर्व को सोख, जैसे राज राम को लागे तुल पवान, जो वासना को खोते को चंदन लेप, नानक जो पावक का सहज स्वभाव, जैसे मैल न लागे जला, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान, मन अपने है सब ते नीचा, नानक जिन ब्रव आप करे, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी अमृत त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी कै सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी

को अपार सगल निस्तार अष्टपदी मन में प्रीत निरंजन दास साध की टहल संसंग हेत सबते जाने आपस को मंदा मन की वासना मन ते डरे नानक कोट मद को ऐसा पारस बिसन की माया ते होए पिन तेस वैष्णो का निर्मल धर्म केवल भगत कीर्तन संग राचे सब ऊपर होवत कृपाल नानक हो वैष्णो परम गत पावे सगल त्याग दुष्ट का संग कर पूजे सगल पार ब्रह्म तिस भगौती ही मत उत्तम होवे मन तन अर्पै बिशन प्रीत नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे राम नाम आत्म में सोते उस पंडर के उपदेश जग जीवे सो पंडित मेरे जो नावे सुख में जाने असूल नानक उस पंडित को सदा देश चौहर नाम जपे को नाम सार संग पावे जन कोए पास प्रेत मुक्त पाथर को तारे कल्याण रूप मंगल गुण गाम नानक तिस मिले किस लिखिया तुर कर्म इसका नाम सत राम दास दास संतन पाए दिन पाया सो दास दरगह परवान तिस दास को सब सोजी करे ऐसी जुगत नानक राम दास जीवन मुक्त सो कहावे सदा नंत नहीं वियोग तैसा अमृत तैसी विखाटी तैसा रंग तैसा राजान नानक पुर कहिए जीवन मुक्त जित जित कर रख है तैसा तिन आओ प्रभ पावे सोई फन होग लखे न जाहे पार ब्रह्म के राम।

कई कोटाचार व्यवहारी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट तपिसर होते कई कोट काव काव विचार है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट अपेक्ष आत्म निकोर कई कोट पर दुख न कर है कई कोट पर देश पर मावे नानक करते की जाने करता रचना कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पाथर बिरख ने पजाए कई कोट देश भूमंडल कई कोट देव दान नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट वेद प्राण सिमरते अर सासत कई कोट नाना प्रकार जानत कई कोट गिरी मेर स्वरत जीवे कई कोट

0: बड़भागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गावे
0: राम नाम जो करे विचार
1: सतन बंद करे संसार
0: बंधन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछाने
1: एतत कियो सो जे जाने
0: नाम संग जिसका मन माने
1: नानक तने निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपन आप सुजे
1: जिसके जानो तितना बुझे
0: साध संग हर हर जस कहत
1: अंदन
0: कीर्तन केवल विख्यान ऊपर जिस जन की आशा
1: जिसकी कटिए जम की भाषा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
1: जिससे न लागे दुख
0: जिसको हर प्रभ मन चित आवे
1: सो संत से ला नहीं दिलावे
0: जिस प्रभ अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किससे डरे
0: जैसा साथ है साथ रिश्ताए
1: अपने कार्य में आप समाए
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया
1: गुरु प्रसाद तब सब बुझिया
0: जब देखो तब सब किस मूल
1: नानक सो सुख में सोई असून
0: नेके जन्मे नेके मरे
1: अपन चलता आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल में है

परम सत्कार योग गुरु की साजनी बाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुग जुगे टल चवर तखत छतर दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान जागदी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार के दो परिवारों का सुमेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूर नेड़े आए सारे पतवंत सज्जणों का तहे दिलों धन्यवाद निघा जीवाया कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर I would like to warmly welcome each one of you who came here all the way to bless this beautiful couple who is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Thank you so much everybody for being here, for joining us today. It's a really pleasure and it's a beautiful day and it's a special day for the couple and your presence makes it even more special. Today it's not just a ceremony but it's a blessing when two souls merge into one in the presence of our eternal Guru. So as we are sitting in this darbar with Guru Sahib as the supreme power, so it becomes our collective responsibility to maintain the integrity and decorum of this darbar, which means absolutely no talking, listening to the kirtan and paying attention. For your convenience and to help you connect more deeply, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, we've got translations in English too. Satsangat ji, sab to pehla jaruri benti hai. अपने जो निजी विचार ने गल्लां बातां ने कृपा करके उन्हां नूं संकोचन की कृपालता करो चुप दा दान बख्शिश करो। अपने फोन साइलेंट ते ला लियो अते जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आउण वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है उत्थे ही असी सतगुरां पासों अपनियां झोलियां भी खुशियां ते खेड़े दे नाल भर के ले जाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखों नूं बाणी पढ़नी आउंदी है जो बाणी कंठ है उन्हां दे चरणां विच बेनती है कि वह भी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने आप जी फॉलो कर सकते हो। आओ दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी जगजीत सिंह गरेवाल सपुत्र सरदार कुलविंदर सिंह जी गरेवाल अते माता जी कुलविंदर कौर गरेवाल परिवार का पिछलेरा पिंड झांडे जिला लुधियाणा पंजाब अते इस वक्त ये परिवार सरी बीसी का निवासी है। जगजीत सिंह दे दादा जी का नाम सरदार दर्शन सिंह जी और दादी जी बीबी करनैल कौर गरेवाल इन्हां दे नाना जी सरदार करम सिंह जी औजला और नानी जी माता हरमेल कौर औजला। इसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा गुलनाज ढिल्लों सपुत्री सरदार अजमेर सिंह जी ढिल्लों और माता जी सतेंद्रपाल कौर ढिल्लों परिवार पातड़ा जिला पटियाला पंजाब तो बिलोंग करदा है अते इस वक्त ये परिवार विनपैग मैनीटोबा का निवासी है। गुलनाज के दादा जी का नाम सरदार कृपा सिंह जी और दादी जी का नाम बीबी जोगिंदर कौर है। इन्हों के नाना जी का नाम सरदार केवल सिंह जी और नानी जी माता रजवंत कौर है। सो इसी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप से जानकारी हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी जगजीत सिंह गुलनाज और इन्हों जो माता पिता हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के हाजिरी लवाउणगे। बाकी संगतां वास्ते बेनती आप जी अपने स्थानों पर सजे रहो। संगरासक सुभाग जोड़ी जगजीत सिंह गुलनाज ढिल्लों एंड देयर पेरेंट्स वेयरएवर दे सिटिंग प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। जिथे जिथे बैठे हो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाण। अरदास की सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी हैड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर उपरंत सतगुरों का मुख वाक ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी आप जी ने सरवण कराउणगे। आओ अरदास बेनती हो रही है एकाग्रता बख्शिश करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोविंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए

धर्म दृढ़ हो हर नाम पे आवहो, सिमृत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरपुरा आराद हो, सब किलबिख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया।

हर पाया प्रवे अविनाशी, हर प्रभु ठाकुर का जिरचाया, तन हृदय नाम विगासी, जन नानक बोले चौथी लावै,

So, Lord, अपने सेवक की आपे रखे आपे नाम जपावे जह जह काज कीर्त सेवक की तहां तहां उठतावे वड़ी वड़ी आई अचरज शोभा कार जो आया रासी